जिसे अपनी दुनिया समझा वही दुनिया उजाड़ गई, जिसके लिए हर दुआ की वही मुझे छोड़ गई। हमने तो दिल देकर सिर्फ मोहब्बत मांगी थी और वो किसी और के लिए हमें तोड़ गई।

तो चुपके से मेरा नाम लेना, मैं वहीं मिलूंगा तुझे शायद जहां तूने मेरा दिल तोड़ा था।

0: और वो फिर भी किसी और की
1: होकर सी गई।
0: अब न मोहब्बत पे भरोसा है न किसी रुकने पे यकीन है। जिसे दिल से चाहा था हमने वही मेरे दर्द की वजह बनी है।

विशाल श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महाक्य सादर निमंत्रणा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण पितृमोक्ष सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यू को मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्वत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्वत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779 9849924909 9844949413 9141969945 9844446550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।